0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फन डे। रेनबो फन डे म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
8: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे

0: में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम मस्त मुंबई रविवार की खूबसूरत सुबह, क्योंकि खूबसूरत इसलिए है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुंबई सुबह कैसे जागती है, तो किसी बीच पर नहीं, किसी हिल पर नहीं, जहां अलार्म से पहले मंत्र गूंजते हैं, शटर खुलने से पहले घंटियां बजती हैं और सूरज से पहले व्यापार तैयार हो जाता है, उस जगह के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर, न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें सुनते हैं और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर तो आप ट्यून इन रहते ही हैं अपने रेडियो सेटअप से। तो आपकी दोस्त माला करे शुरुआत मस्त मुंबई, आज चल के तुझे लेके चलूं आज एक ऐसी जगह पर, उस जगह के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले सुनाऊंगी ये खूबसूरत सा नगमा।

राधे श्याम की जय हो सिया राम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम मस्त मुंबई आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। और आज मैं आपको लेकर आई हूं कालबा देवी की गलियों में, जहां आस्था भी काम से पहले उठ जाती है और दुकान खुलने से पहले माथा टेक दिया जाता है। जी हां, मैं खड़ी हूं मुंबा देवी के पास, जिसके नाम पर अपने शहर मुंबई का नाम पड़ा। और हम आपको ले चल रहे हैं सबसे पहले कालबा देवी मार्केट के बीचों बीच। चारों तरफ रंग, आवाजें, मोल भाव, कहीं पूजा की थालियां, कहीं मसालों की खुशबू, कहीं शादी के कपड़े तो कहीं बर्तनों की खनक। तो जरा कल्पना कीजिए, ये वही मुंबई है जो कभी रुकती नहीं, पर हर किसी को अपनी जगह दे देती है। यहाँ शॉपिंग भी है और जिंदगी की पूरी इन्वेंटरी भी। कालबा देवी मुंबई के सबसे पुराने होलसेल मार्केट्स में से एक है। यहाँ रिटेल से पहले शहर का कारोबार सांस लेता है। तो जरा सोचिए, कब आपने किसी शहर को इतने करीब से देखा था? और अगर देखा था तो बताइए हमें। आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर नंबर है हमारा 8657661071, यानी कि 8657661071। तब तक हम आपको ले चलते हैं कालबा देवी की गलियों में। मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चलूं। साथ बनी हुई है आपके आपकी दोस्त माला।

0: काय दिलं जातं याची माहिती आपण दिलीत श्रोत्यांच्या वतीने, त्याबद्दल मी आपले आभार मानते. धन्यवाद. दागिना सोन्याचा असो वा हिऱ्यांचा, दागिना म्हणजे फक्त पूना गाडगीळ आणि सन्स. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत पूना गाडगीळ आणि सन्स, रचना संसद समोर प्रभादेवी मुंबई, गोखले रोड ठाणे, फडके रोड डोंबिवली आणि बदलापूर.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर. कार्यक्रम मस्त मुंबई आज चल के तुझे लेके चलेंगे. एक बार फिर आपके साथ जुड़ गई है आपकी दोस्त माला, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं कालबा देवी. कालबा देवी की गलियों में हमने आपको ऑलरेडी पहुंचा दिया और आपको बताया कि ये वो जगह है जहां अलार्म से पहले मंत्र गूंजते हैं, शटर खुलने से पहले घंटियां बजती हैं और सूरज से पहले व्यापार तैयार हो जाता है. और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर आपकी दोस्त माला के साथ. और इसी शोर के बीच एक मोड़ आता है जहां कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं. कालबा देवी की भागती चाल यही आकर मुंबा देवी के सामने थोड़ी थम जाती है. शायद इसलिए क्योंकि मुंबई दौड़ना जानती है, पर सिर झुकाना भी मुंबई को बहुत अच्छे से आता है. मुंबा देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, मुंबई की आत्मा है. इतिहास कहता है कि पहले यहाँ मुंबा आई की पूजा होती थी और उसी से बना मुंबई. शायद इसलिए यहाँ आने वाले लोग सिर्फ मन्नतें और दुआएं ही नहीं मांगते, काम शुरू करने के लिए हिम्मत भी लेते हैं. और वही हिम्मत आप भी हमें देते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर. श्रीधर मुजरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज के दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं. विजेंद्र घटोला कोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और शुभदा भी सुन रही हैं, साथ ही लवली संडे कह रही हैं आपको भी शुभदा. महेश बोहरा भी सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम और उन्हें इंतज़ार रहता है हर रविवार 8:40 का ताकि हमसे वो कनेक्ट हो पाए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे भी हमें सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ही समय मिलता है मैं मुंबा देवी के दर्शन के लिए जाता हूँ और वहाँ जाकर सुकून भी मुझे बहुत मिलता है. आजू बाजू के सभी प्रेक्षणीय यानी देखने लायक जगहों पर भी मैं जाता हूँ और फिर गिरगांव चौपाटी और आकाशवाणी की तरफ भी हो लेता हूँ. तो भाई ऐसे ही होते रहिए, आकाशवाणी की तरफ बनाए रखिए, उसे अपना दिल में जगह देते रहिए. फिर उससे गिनपुरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज महोड़ हमें सुन रहे हैं, प्रमोद चिंचोलकर को गाने पसंद आ रहे हैं, रजनीकांत पाटिल वाडवन से हमें सुन रहे हैं, यशवंत आडमुठे, अंजू अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रविंद्र शिनॉय जोगेश्वरी से हमें सुन रहे हैं. आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. महेश भाटकर भी आ चुके हैं सांताक्रूज से और राम प्रजापति वसई से. इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो कार्यक्रम मस्त मुंबई आचल के तुझे, यानी कि मैं आपकी अपनी माला लेके चल रही हूँ कालबा देवी की गलियों में.

0: यहाँ पे सब।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, आशल के तुझे लेके चलूं। और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। और आप सुन ही रहे हैं अपनी दोस्त माला को एफएम रेनबो के माध्यम से। और आज हम आपको ले जा रहे हैं कालबा देवी की गलियों में, आशल के तुझे लेके चले कार्यक्रम के माध्यम से। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों तरफ आपको मार्केट में रंग, आवाजें, मोल भाव, कहीं पूजा की थालियां, कहीं मसालों की खुशबू, कहीं शादी के कपड़े, तो कहीं बर्तनों की खनक सुनाई देगी। और ये वही मुंबई है जो कभी रुकती नहीं पर हर किसी को अपनी जगह दे देती है। यहाँ शॉपिंग भी है, जिंदगी की पूरी इन्वेंट्री भी है और होलसेल मार्केट तो है ही। और इसी मोड़ पर आता है, इसी शोर के बीच में एक मोड़ आता है और जहां आपके कदम धीमे हो जाते हैं, और वो है मुंबा देवी मंदिर। और ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, मुंबई की आत्मा है। और इतिहास कहता है कि ये यहाँ पर मुंबा आई की पूजा होती थी। मैंने यहाँ पर एक दुकानदार को देखा जो रोज दुकान खोलने से पहले बस दो पल इस मंदिर के सामने रुक जाते हैं। ना लंबी पूजा, ना दिखावा, दिल में सिर्फ और सिर्फ आस्था, हाथ में काम और आंखों में ढेर सारे सपने। आप भी तो ऐसे ही है ना, और हम भी ऐसे ही हैं। और यही है मुंबई, जहां फेथ और फेलियर एक ही गली में साथ साथ चलते हैं, दोनों एक एक किनारे पकड़कर अपनी राह को पा लेते हैं। ये आप पर है कि आपको फेथ की तरफ जाना है, फेलियर पकड़ना है, या फिर अपने भविष्य की तरफ पहुंच पाना है।

और ये तो आप सभी मानते होंगे कि सारे शहर में एफएम रेनबो 107.1 एफएम जैसा तो कोई चैनल नहीं है जहां पर आप जुड़ जाते हैं दिल से दिल तक। और आज कार्यक्रम है मस्त मुंबई, आशल के तुझे लेके चलूं, साथ बनी हुई है हर रविवार की तरह आपकी अपनी दोस्त माला। आपसे मिलने चले आती हूं और आपको ले जाती हूं एक खूबसूरत सी जगह जो आपको भी पसंद आती है, और अगर पसंद आती है तो ज़रूर हमें बताइए मैसेज के माध्यम से, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं FM

rainbowhindi2@gmail.com पर। नंबर तो आप हमारा जानते ही हैं 8657661071, 8657661071। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। तो आज मस्त मुंबई में हम आपको लेकर आए कालभा देवी, और कालभा देवी की इस सैर में एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ जाऊंगी कि आपने कभी अपने शहर को इतनी नजदीक से महसूस किया है? और अगर नहीं किया है तो किसी रविवार भीड़ से बिल्कुल मत डरिएगा, बस चल पड़िएगा।

भास्कर सोनावली हमारे साथ जुड़ गए हैं वड़गांव रसायनी रायगढ़ से। कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। पंकज मोहोड़, आप बिल्कुल निराश ना हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी मैसेज जो है आप तक पहुंचाए जाए और सभी सुनने वालों तक पहुंचाए जाए। हैप्पी संडे मॉर्निंग आपने विश किया था, तो आपको भी इस रविवार की शुभकामनाएं। बाबा दादर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र परमार, महेश बोहरा हमें सुन ही रहे हैं, विजेंद्र घटोल अकोला से, फिरोज सिगिन पुरिया कह रहे हैं कि मुंबा देवी के बगल में फेमस एक जगह है जहाँ जलेबी बहुत फेमस मिलती है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो सोना चांदी सब कुछ मिल जाएगा, तो भाई ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए। महेश पाटकर सांताक्रूज से, गणेश पाटिल वाडवन से, शुभदा श्रीधर मुजारकर, राम प्रजापति वसई से, वो कह रहे हैं मैं मुंबा देवी तो गया हूँ और कालवा देवी कभी नहीं गया हूँ। सोचता हूँ कि कार्यक्रम सुन लिया है, हमें काफी जानकारी मिल गई है, और सुनने के बाद वहां जाना जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि वहां जाएंगे तो सिर्फ बाजार ही नहीं, खाने पीने का भी खूब सारा सामान आपको मिल पाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन FM रेनबो से अभी आपकी दोस्त माला नहीं जाएगी। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, और 10:00 एक बार फिर समाचारों के साथ जुड़ जाएगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, इतने प्यार से आप जुड़ते हैं, हम भी आपके पास प्यार लेने चले आते हैं, इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ FM रेनबो 107.1 FM पर। आपको छोड़ जा रही हूँ इस खूबसूरत से नगमे के साथ, इंजॉय कीजिए FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

शांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दास्ता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया।

सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:30। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। पश्चिम एशिया और हरमूज जल डमरू मध्य पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और बहरीन के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की ईरान हरमूज जल डमरू मध्य को खोलने पर सहमत हो गया है, हरमूज जल्द खुल जाएगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया, जिससे शहर के मध्य में स्थित सरकारी कार्यालय, आवासीय भवन और स्कूल के पास की इमारतें प्रभावित हुईं। स्थानीय अधिकारियों ने प्रारंभिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि इसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। नासिक की अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसिफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्ते भारत, आज है 24 मई और 2026 चल रहा है साल, और ये जो महीना है ये गर्मी से भरा हुआ महीना होता है, और इस गर्मी की वजह से मुंबई का शोर थोड़ा थम भी जाता है, ट्रैफिक की आवाज़ें भी थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं, और बची रह जाती है सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ होती है दिल की आवाज़। तो भाई आज नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें में हम उस खामोशी को सुनेंगे जो शुरुआत में अक्सर सबसे ज्यादा सच बोलती है। तो भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर, नमस्ते भारत मेरा दिल मेरी बातें, और साथ हूं मैं हर रविवार की तरह आपकी अपनी दोस्त माला।

0: तो भाई रात को कौन सी कली आपके ख्वाब में आई थी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल तो हम आपके साथ हैं आकाशवाणी मुंबई की एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, और पंकज महोड़ ने इस खूबसूरत से गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। और भी बहुत सारी फरमाइशें और बहुत सारे नाम जो है वो हम तक पहुँच चुके हैं। जुहू मुंबई से हमारे पास सुखदेव सिंह रोहित और उनकी प्यारी सी वाइफ जो है रविंद्र कौर सुखदेव, ये दोनों हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरह प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने हमें सुनाते रहिए। अंजू अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रणव शिंदे की तरफ से हमें एक प्यारा सा मैसेज आया है। दिल की खामोशी में जज्बातों का एक समंदर छुपा होता है, जहां शब्द भले ही कम हो पर एहसास बेहद गहरे होते हैं। शोर मचाती हैं दिल की बातें अक्सर, पर मेरी खामोशियां भी सुनता है कोई अंदर। कुछ राज ऐसे हैं जो जुबान पर ना आ सके, मेरी उदास आंखें जिन्हें छुपा ना सके। एक तरफ है खामोशी, एक तरफ है इंतजार, ये दिल भी उसी से खफा है जिससे है प्यार। वो समझ ना सके जो इन खामोश आंखों में था, अब शब्दों को ढूंढना भी तो है बेकार। खामोशियों की भी एक जुबां होती है जो बयां ना हो सके, वही तो मोहब्बत की पहचान होती है। प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे की तरफ से ये प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचा है और हमने आप तक पहुंचाया है, सभी सुनने वालों तक जो सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। धनंजय नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र घटोल अकोला से हमें सुन रहे हैं, शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी हमसे जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज उन्होंने भेजा है, और सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश पाटिल वाड़वन टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। 10:15 हो चले हैं, इससे पहले कि अगला गाना हम आपको सुनाएं, आपको हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना

0: रहा था।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आपकी और हमारी जो दोस्ती है वो हम में तो पसंद है, आपको भी पसंद है, तभी तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बात है। और आज जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो एक ऐसे मैसेज की है जो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाता है और वो मैसेज ट्रेंड भी हुआ। कई बार हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो हम तक पहुंच नहीं पाते और वो अनसेंट मैसेजेस में तब्दील हो जाते हैं, और ऐसे जो मैसेज होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर अगर कोई पोस्ट कर दे तो वो ट्रेंड हो जाता है।

बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस तो पहुंच ही चुके हैं। महेश बोहरा जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से। वहीं विजेंद्र घटोल भी हमें सुन रहे हैं और इसके अलावा प्रणव शिंदे ने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का ये गाना जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। और ये मैसेज हमारे पास आया है राजकुमार अग्रवाल की तरफ से, जो रहते हैं मुंबई के जुहू बीच के आसपास, और इस समय वो यहाँ नहीं है, वो मुंबई से पहुँच चुके हैं कश्मीर की तरफ, और साथ ही में उनकी बेटी प्रीति है और उनके हस्बैंड राहुल भी उनके साथ हैं, और ये लोग जो हैं खूब धमाल मचा रहे हैं कश्मीर में घूमकर, और साथ ही साथ उनके बच्चे भी उनके साथ हैं, उनके देवता और देवती अमन और श्लोका, और वो भी सुन रहे हैं हमें ऐप के माध्यम से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। विजेंद्र घटोला कोला से हमें सुन रहे हैं, तो भाई आप सभी का हमें सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद चंचोलकर भी आ गए हैं और वो भी एक गाना सुनना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो पसंद के गाने हैं वो हम जरूर प्ले करें। और रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाड़वन से जुड़ गए हैं, पंकज मोहड़ तो लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, ये गाना मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें रविवार की ये सुबह जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है और हम कर रहे हैं आपसे ढेर सारी बातें और आपकी पसंद के गाने भी हम आपको सुना रहे हैं। अगला जो गाना है उसकी फरमाइश हमारे पास जो है प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे ने भेजी है। करण अर्जुन फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं और ये वैसे मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। महेश बोहरा ने भी एक गाने की फरमाइश की है, हमारे पास पहुंचाई है। चरस फिल्म का ये गाना है तो ये दो गाने बैक टू बैक सुनते हैं और फिर

और उसके बाद करेंगे आपसे ढेर सारी और बातें, पर पहले ये गाने सुनकर आइए। और जो गाना भी आपने सुना था दिल एक मंदिर, ये गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंचाई थी फिरोज सिगनपुरिया और उनके ग्रुप ने, जो हमारा कार्यक्रम लगातार एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल आप प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे का ये गाना एंजॉय कीजिए और उसके बाद होगा महेश बोहरा का गाना। अजमेर राजस्थान से इन्होंने हम तक मैसेज पहुँचाया है।

और आप तो हमारे साथ बने हुए हैं ठीक 8:40 से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, और आप हमें याद भी बहुत आते हैं इसलिए हम आपसे मिलने चले आते हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। तो भाई कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत मेरा दिल मेरी बातें, साथ बनी हुई है लगातार आपके आपकी दोस्त माला, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप तो हमें सुन ही सकते हैं 24/7 इस धरती पर जहां भी इंटरनेट एक्सेस है ऐप के माध्यम से। तो भाई 10 सेकंड की एक रील जो है पिछले 3 दिनों में लाखों बार देखी गई। वैसे वो कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन जो लिखा था वो खास बन गया। उसमें बस इतना लिखा था कि आज मैं समय पर सो गया। लोग हंसे, जुड़े और बोले कि ये भी एक जीत है। ये लाइन हमें सिखा रही है कि जिंदगी अब माइलस्टोन से नहीं छोटी छोटी जीतों से मापी जाती है। दिल भी यही चाहता है, कम शोर और ज्यादा सुकून। और रविवार का दिन भी कुछ ऐसा ही होता है, और हम भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये दिन जो है सुकून और खुशी से भरा हुआ हो। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर अगला गाना किशोर कुमार और सपना की आवाज में, और उसके बाद हम लेंगे गाना सुखदेव सिंह रोहित और उनकी प्यारी सी वाइफ, जिनका मैसेज हमने पहले ही शामिल किया था रविंद्र कौर सुखदेव का, उनकी पसंद का गाना हम लेंगे कभी कभी फिल्म से। तो एंजॉय कीजिए ये दो गाने हमारे साथ बैक टू बैक ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर 10:56 और ठीक 13 सेकंड हो चले हैं और वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन आपसे हम कभी इजाजत नहीं लेते, आपके दिल में हमेशा हम जगह बनाए रहते हैं, तभी तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं दिल से दिल तक। वीरेंद्र खटोल अकोला से जुड़ गए हैं और ये मैसेज है आरती सैया का कांजूर मार्ग से, और साथ में चिराग रमेश करानी भी शायद उनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद चिंचोलकर, अगर आपकी पसंद का गाना नहीं बजा है उम्र अकोला से, इन्होंने हमें मैसेज किया है, तो कोई बात नहीं प्रमोद जी, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपका गाना जरूर बजाएं। और पंकज महोड़ तो सुन ही रहे हैं, महेश बोहरा राम प्रजापति वसई से, फिर सिगनपुरिया धनंजय नवी मुंबई से, चेतन कुमार भी हमारे साथ हैं मानपुर गया बिहार से, और ये मैसेज है मुंबई के विक्रोली ईस्ट से। ये मैसेज आया है हमारे प्रथमेश डोंगरे का, तो प्रथमेश जी आपकी पसंद का गाना फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम जरूर प्ले करेंगे, क्योंकि वक्त जो है अब इजाजत नहीं देता कि और गाने हम आपके लिए प्ले कर पाए। रजनीकांत पाटिल वाड़वन से, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश पाटिल भी है, अंजू अंधेरी ईस्ट से, शुभलक्ष्मी मस्तकार और विजेंद्र घटोल तो सुन ही रहे हैं। फिलहाल अपनी दोस्त माला को दीजिए इजाजत, अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप समाचार और ठीक 11 बजे होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, तो कहीं जाइएगा नहीं। आपकी दोस्त माला आपसे ये वादा करती है कि जल्द ही आपसे होगी फिर मुलाकात FM रेनबो पर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:58 और ठीक 8 सेकंड। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। सरकार कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले 11% सीमा शुल्क को हटाने की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच परामर्श अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की सुरक्षा जांच चौकी के पास अधिकारियों पर गोलीबारी करने वाले एक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई। संघीय अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के दौरान पड़े मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा के देवांशु पांडा अपने विरोधियों से बहुत आगे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की सीट पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ और अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद मतदान रद्द कर दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूती से बनाए रखा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए मुकाबले में पंजाब ने दमदार बल्लेबाजी के दम पर 197 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
1: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं

0: गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं, इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं, वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घुराड के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बारह ते ऐसा सब

0: शब्द से नवाजा था। तो ये लाखा जी के बारते क्या है सर?
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
0: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते
1: हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं। और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
0: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह, का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट

0: के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था,
1: कच्छ के महाराव ने
0: जी। फिर महाराव खेंगा III इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक। एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया, जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
1: सबसे पहले तो श्रोताओं को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
0: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है, जिसे कहते हैं रोड टू हेवन या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
0: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है। एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
0: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सौ प्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे? एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: जी, जैसे फ्लेमिंगो
1: को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
2: श्रोताओं, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
1: जैसे रहे ना रहे हम ऐका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
2: बिल्कुल, प्रस्तुत है श्रोताओं आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इन्वाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
0: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं, तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है, जैसे कि नड़ावेट विस्तार है उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनके भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
1: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंट्स बनाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
2: जी।
1: और इससे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
2: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

0: श्रोता मित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वो हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड़ की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड्स सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहाँ पर जो मादा घोराड़ हैं तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साहब ने बताया था कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्सीटू भी चल रहा है। एक्सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें
0: और
2: कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक SOP भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
2: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसो

0: एपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गाँव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाएं, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाएं उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के पांचवे एक जो वेटलैंड्स है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में है, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारीडंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। 12 बज चुके हैं और अभी हम हिंदी में समाचार सुनेंगे। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ईंधन बचत मुहिम, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपयों की कमजोरी के कारण भारत में वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में परिवहन ईंधन की मांग वृद्धि में सुस्ती आने की आशंका है। ऊर्जा विश्लेषकों ने यह राय जताई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से 3 चरणों में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज का दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच शाम 7:30 बजे होगा। दिल्ली के प्राइम पॉइंट फेडरेशन की ओर से दिए जाने वाले संसद रत्न पुरस्कार इस वर्ष 12 सांसदों को घोषित हुआ है।

0: महाराष्ट्र से निर्वाचित श्रीकांत शिंदे, नरेश मस्कले, स्मिता वाघ, हेमंत सवरा तथा मेघा कुलकर्णी इनमें शामिल है। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारामूला जिले के नीलसर कंडी इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक गोला बारूद बरामद किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर बारामूला पुलिस 52 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के इलाकों में संयुक्त अभियान चलाया। तो इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। सुनते रहिए FM रेनबो।
1: गुड आफ्टरनून मुंबई, FM रेनबो पर आपका स्वागत है। मैं हूं भावना
0: और मैं हूं उर्वशी।
1: एक बेहद ही खूबसूरत और सुकून भरी संडे के इस दोपहर में आप सभी का स्वागत है। वैसे खूबसूरत है तो नहीं दोपहर, पर क्या तुम्हें पता है उर्वशी, मैं जब आ रही थी ट्रेन से तो अंधेरी से बांद्रा के बीच में बौछारे, बारिश की बौछारे दिखी है। जो सुकून मिला है मुझे, और मैं जिस बच्चे की तरह खिलखिलाकर चिल्लाई हूँ उस वक्त की बारिश, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। बट दैट वॉज सो रिलीफ, मतलब इतना सुकून मिला है उस बारिश को देखकर।
0: जिस हिसाब से यहाँ पे गर्मी हो रही है, थोड़ी सी बारिश भी हमको बच्चे की तरह खुश करने के लिए काफी है भावना। आई अंडरस्टैंड दैट।
1: बस वो बच्चा जाग गया, जैसे तुमने कहा था ना कि डोसा के तवे पर जिस तरह पानी की बूंदे पड़ती हैं और छन, बस वही हाल है। वेल, संडे की दोपहर बस वैसी ही है, बस जैसे चाय के साथ आपकी फेवरेट बिस्किट, रिलैक्स्ड और सुकून वाली, वो आपको मिलती है सिर्फ म्यूजिक कैफे में, जो कि है FM रेनबो पर हमारे साथ। लेकिन आज क्योंकि संडे है तो हर कोई संडे पर अपने घर की सफाई करता है, करेक्ट? साफ सफाई, जो भी जितनी भी चीज है, आज हम भी सफाई करेंगे।
0: अच्छा, किसकी?
1: सही सवाल, लेकिन जवाब मैं बताती हूँ। सफाई कमरे की नहीं, सफाई दिल की करेंगे आज।
0: दिल की सफाई मतलब?
1: बहुत सही सवाल पूछते हो। अलग ही। चलो इस अगले गाने के बाद बताते हैं
0: ठीक है
1: क्या साफ करने वाले हैं और कैसे दिल को साफ करेंगे आज।

0: दोस्त से नैना लोए होए होए रेखा भारद्वाज की आवाज एंड ये है फिल्म जिंदगी 50-50।
1: नाइस, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और है मैंने बहुत टाइम के बाद सुना तो मुझे और अच्छा लगा।
0: अरे इंतजार करते रहिए आप सब भी। और ऋषि तुमको तो पता ही है प्लेलिस्ट पर ये हमारी सीक्रेट है। लिसनर्स के लिए ये सरप्राइज होने वाला है। काफी प्यारी प्लेलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है। म्यूजिक कैफे का माहौल बहुत ही रोमांटिक सोलफुल और सूदिंग होने वाला है। वैसे सफाई की बात जो आपने पूछी थी कि दिल की सफाई हम कैसे करेंगे, हम बताते हैं आपको। ये है उर्वशी मतलब कि पूरे हफ्ते जब हम परफेक्ट इंसान बनने की एक्टिंग करते हैं, दैट्स राइट, काम पर, घर पर, भागते दौड़ते, ट्रेन में, मेट्रो में, दोस्तों के साथ, हर जगह वी हैव टू बी परफेक्ट। पर हम एक इनविजिबल सा या अदृश्य सा इमोशनल बर्डन लेकर चलते हैं।
1: Okay.
0: और वो इमोशनल बर्डन जो बोझ होता है वो पता है आपको कहाँ फील होता है? जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती हैं।
1: Yes, so true.
0: सपने आपकी आंखों में होते हैं।
1: Yeah.
0: मुस्कान आपके होठों पर होती है।
1: Yes.
0: और जो इमोशनल बर्डन है वो आपके दिल में होता है।
1: So true.
0: जो बोझ आप लेकर दिलों में चलते हैं, इस पर मुझे पता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग याद आ गया, फरहान अख्तर वाला।
1: ओके okay.
0: जिंदा हो तुम। वेल आई वुड नॉट टेक द क्रेडिट, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से बोला तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन हाँ हमारे लिसनर्स ने अगर मूवी देखी है तो उन्हें पता होगा, और नहीं देखी तो प्लीज देखिए क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक ही जिंदगी है यार। इस जिंदगी में ये जो दिल पर बोझ है उसे लेकर हम क्यों चले? करेक्ट,
1: सही बात है।
0: और आज इस कैफे में बिना किसी शोर शराबे के बस एक अच्छी सी कॉफी, या फिर शायद अभी इतनी गर्मी है नारियल पानी, या फिर कोल्ड ड्रिंक,
1: यस एक्जेक्टली, कुछ ठंडा
0: कोकम शरबत,
1: यस परफेक्ट,
0: समथिंग जहां पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना हो। कोकम शरबत हमारे पास तो इंडियन देसी नुस्खे में कितनी सारी चीजें हैं,
1: इतने सारे अच्छे अच्छे हमारे यहाँ ड्रिंक्स हैं जो हम पी सकते हैं इस गर्मी को बीट करने के लिए।
0: छाछ, लस्सी, देखो हम वापस से डाइवर्ट हो गए। हाँ। तुम मुझे कंट्रोल में रखो, खाने की बात हम बाद में करेंगे।
1: जी हाँ।

0: और इसी के साथ आपकी फेवरेट धुने जो कुछ दिल की बातें करेंगी।
1: क्या बात है भाई, संडे की दोपहर में स्लो सोलफुल गाने हैं, कुछ सुकून वाली बातें हैं, और समझो पूरे हफ्ते की थकान का इलाज हम दोनों आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही नर्म ट्रैक के साथ, जो धीरे धीरे बाजू में बैठकर दिल की बात समझ लेता है ना?
0: ट्रू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन।

0: देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर

0: क्या सॉफ्टनेस थी इस गाने में। एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और म्यूजिक कैफे का समय है। भावना, सच में एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े होने का ना सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमने ना अपनी फीलिंग्स जो है उसको छुपाना सीख लिया है।
1: बात तो सच है। इसी बात पर एक बात याद आई है मुझे।
0: जी, बोलिए बोलिए।
1: कुछ दिन पहले की बात है ये, जब हम मेट्रो में सफर कर रहे थे।
0: अरे वाह, नई अपने लाइन में।
1: जी जी, नहीं नहीं, पुरानी लाइन है, बात नहीं है।
0: अच्छा।
1: और ये सफर सफर वाला सफर नहीं था, सफर ट्रैवल वाला था। जहाँ पर एक बच्ची है वो यहाँ से वहां कूद रही है, वो बार पर लटकता है ना ऊपर, जो हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं उस पर खेल रही है, कूद रही है, बंदरों की तरह उछल कूद कर रही है, बड़े ही मासूम सी प्यारी सी बच्ची। अब इसी चीज पर मुझे आया एक सवाल, क्योंकि मैं तो हूं ही क्वेश्चन मार्क टाइप। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि वो बच्ची देख रहे हो, तो क्या तुम उसकी तरह अभी अगर मैं कहूँ तो उछल कूद कर सकते हो, जैसे वो नाच रही है, तुम नाच सकते हो? तो कहता है हाँ, पर अगर मेट्रो खाली हो और कोई ना देख रहा हो तब। यही तो बात है।
0: हाँ, वो बचपन वाली बात है ना, कि गुस्सा आ गया तो रो लिया, खुश हुए तो नाच लिए, कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुंह फुला के बैठ लिए, और अब तो बस आई एम फाइन का मास्क पहनकर घूमते रहते हैं।
1: अरे यार, यही तो बात है कि आखिर कब से हम ये सीख गए कि स्ट्रांग बनो, ज्यादा मत सोचो, इतना इमोशनल मत हुआ करो। आज इस कैफे में वो मास्क उतार देते हैं।
0: जी जी,
1: ठीक है, आप भी उतार दो, मैं भी उतारती हूँ। और लिसनर्स, आप तो सुन ही रहे हो, आप किस बात का मास्क पहनकर बैठ रहे हो? हम तो दिखते भी नहीं है। हम तो सुनाई देते हैं सिर्फ, और हमसे तो आप बेझिझक बात कर सकते हो, क्योंकि हम आपके वो साथी हैं जो आज है कल नहीं है, लेकिन आपकी बातें हमारे दिल पर पहुंचेंगी, दिल तक रहेंगी, और किसी को पता नहीं चलेगा।
0: yes.
1: और कोई जज नहीं कर रहे हो, कोई जज नहीं करने वाला, हम भी नहीं। और अगर आज दिल किसी बात पर आपका भारी हो रहा है, या फिर कुछ से कुछ महसूस हो रहा है, तो होने दो।
0: हाँ, दो आंसू टपकने दो,
1: या फिर शायद आपको चलती ट्रेन में चिल्लाने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, तो गा लो, नाच लो, क्या पता आपको देखकर शायद और दो पैर थिरकने लग जाए आपके साथ में। और ये जो अगला गाना है, ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो बिना कुछ पूछे बस कंधे पर हाथ रख देता है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो प्यार वाला गाना है, दोस्ती वाला, हम दोस्त तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप इस गाने को मान लीजिए, यानी कि ये जो कह रहा है गाना उसे एक्सेप्ट कर लीजिए।
0: ओके।
1: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में ध्यान से सुनेगा इस गाने के बोल, ठीक है, नोट डाउन करना उर्वशी। okay. ये लाइन ही स्टार्ट होती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिल में जो बात है कह दो, यही तो कह रहे हैं कि दिल की जो भी बात है कह दो, दिल हल्का कर लो।
2: जी हाँ।
1: वैसे तुम क्या कर रही हो आज दोपहर में?
2: आज दोपहर में एक अच्छी सी साथी है मेरे साथ, और जिसके साथ हम प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं और प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद शो के बाद क्या कर रही हो?
2: शो के बाद देखो, आज है संडे और आज घर जाने के बाद शायद दाल चावल खाने के बाद सोया।
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब प्लान कैंसिल करो, क्योंकि हमें आया है इनवाइट।
2: अच्छा,
1: शुभदा जी ने मैसेज किया है, गुड आफ्टरनून, दोनों को लंच के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आम का रस,
2: अरे
1: पकौड़े, बिरयानी, सैलेड।
2: उनको बोलो कि हमको शो करना है अभी और हमको भूख लग जाएगी।
1: डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर लिस्ट काफी अच्छी है। देखिए, वेल शुभदा जी, हम आएंगे इस बात पर, लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी बात जिस पर हमने बात की शुरुआत की थी।
2: yes.

0: कि ये बोझ जो है, सारी दुनिया का बोझ जो हम उठाते हैं, तो कई बार इस दुनिया की बातों में और दुनिया भर के लोगों को, दुनिया का ख्याल रखते रखते ये हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि मैं कैसी हूँ।
1: सही बात है। और
0: आप कैसी हो उर्वशी?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। और सच कहूँ भावना, कभी कभी ना जो थकान होती है ना, वो हमारे शरीर से या बॉडी से नहीं होती है, दिमाग और दिल की थकान होती है। वो जो बोझ उठाते उठाते थक जाते हैं और फिर हम वो अपना क्लासिक एडल्ट डायलॉग मार देते हैं कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ।
0: जो अभी आपने कहा मैं अच्छी हूँ, वेल एक्चुअली हम अच्छे हैं, बिकॉज़
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हम म्यूजिक कैफे पर हैं एंड आई ऑल्सो होप कि माई लिसनर्स भी म्यूजिक कैफे और इन गानों को सुनकर मैं बहुत ही फर्स्ट क्लास हूँ ये सोच रहे होंगे।
1: आई होप सो।
0: बट ये क्लास इसलिए है क्योंकि म्यूजिक कैफे खत्म होने के बाद आप जब खुद के साथ बैठेंगे तो उस वक्त पर ये झूठ तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
1: यस, बिल्कुल नहीं चलेगा।
0: कौन सा झूठ है वो?
1: कि मैं ठीक हूँ,
0: आई एम फाइन। बिल्कुल गोल्ड मेडल ऑस्कर जीतने वाला परफॉर्मेंस हर बार। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन मेरे पास है जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट कोई थेरेपी नहीं लगती है इसके लिए। बस थोड़ी देर के लिए आपको मेमोरी लॉस में जाना है।
1: मेमोरी लॉस?
0: जी, आपको भूल जाना है कि आपके पास दुनिया है। आप इस दुनिया में हो। आप भूल जाइए आप कौन हो। ठीक है। और आपको बनना है बिल्कुल ही, आप बताओ आपको आइडिया है कि क्या है इसका जवाब?
1: आप बताइए।
0: आपको बनना है बेशरम।
1: बेशरम?
0: बिल्कुल। अच्छा? बेशर्मी की हाइट बढ़ा देनी है बिल्कुल इस गाने की तरह।
1: जी सुनाइए। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द सॉन्ग।
0: डन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। मैं हूं भावना
5: और मैं हूं उर्वशी,
4: और हम दोनों आपके साथ यहां पर दिल की बात करने आए हैं और आपके दिल की बात सुनने आए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जैसे कहा कि आज सफाई हो रही है
5: दिल की।
4: सो अगर कोई ऐसी बात है जो आप काफी समय से दिल में दबाए बैठे हैं, कोई ऐसी याद जो आज संडे की दोपहर में बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमें मैसेज कीजिए। कभी कभी सिर्फ किसी को बता देना ही बहुत सुकून देता है। और मेरा तो ये भी मानना है उर्वशी कि जब हम कहते हैं ना कि रोना कमजोरों की निशानी है, मुझे लगता है रोना कमजोरों की नहीं, ताकतवर लोगों की निशानी है। क्योंकि आप उस उभरते हुए सैलाब को जिस तरह आप समेटते हैं खुद को, जिस तरह आप सामना करते हैं अपने जज्बातों का और एक्सेप्ट करते हैं, गले लगाते हैं कि यार रो लो, रो लेने दे आज, और जो दिल हल्का होता है उसके

0: ये इतना आसान
1: so
0: नहीं.
1: सो ट्रू. और मैं अपने सारे लिसनर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज आपका दिल किसी को याद कर रहा है तो एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अगले घंटे में हम हिट एंड हॉट यानी कि रिक्वेस्ट आवर लेके आएंगे. तो मैं आपकी पसंद के मेलोडियस, रोमांटिक और सोलफुल गाने बजाने का सोच रही हूँ. तो फटाफट से हमें मैसेज कर दीजिए. क्यों भावना?
0: करेक्ट. और कहाँ भेजना है आपको ये मैसेजेस? अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो आपके मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी अभी सुन रहे हैं और आपको बहुत ही जोरों से आपके दिल में घंटियां बज रही है, कर ले मैसेज, कर ले, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा मत सोचो, बस करके देखो. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. तो अब क्यों आपकी उंगलियां अभी भी फोन के कीपैड पर हैं, उन्हें एंटर या सेंड दबा दीजिए और कर दीजिए मैसेज. कह दो दिल की बात हमारे लिए, हम तो सुन रहे हैं आपकी बातें, लेकिन अगर किसी और के लिए भी है तो आज तो कह दो. वो सुने ना सुने, लेकिन आपने कहता ना यूनिवर्स में साइन देना, वैसे रेडियो पर आपने साइन दे दिया. और यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ तो महसूस जरूर होगा.
1: यस सर.
0: एंड आई वांट यू टू एक्सपीरियंस. मैं चाहती हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस करे लिसनर्स. तो मैं, पता है कितने बार तो मैंने ऐसी रैंडमली हमारे सोशल मीडिया पे, अच्छा सीक्रेट तो था ये, अब नहीं है, आई एम शेयरिंग द सीक्रेट विद यू एवरीवन. मैं ऐसी रैंडमली एक्टर्स और ऐसे जो मुझे पसंद आते हैं आर्टिस्ट, मैं उन्हें हाय हेलो और मीम्स भेज देती हूँ.
1: ओके.
0: क्या पता देखे ना देखे, ना देखे तो कोई नुकसान नहीं, अगर देखे तो उनका दिन बन जाएगा यार. इतने प्यार भरे मीम्स मैं भेजती हूँ क्यूट क्यूट से, सो किसी को भी वो दिन अच्छा बन जाएगा. क्या पता किसी को जरूरत हो. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई.
1: एग्जैक्टली. और तब तक के लिए म्यूजिक कैफे की हमारी इस सुकून भरी वाइब को इस गाने के साथ थोड़ा और गहरा किया जाए.
0: अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, वैसे
1: ओह माय गॉड. तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ को ना थोड़ा सा इजी लीजिए और मजे कीजिए.
0: बिल्कुल, क्योंकि तेरा यार हूं मैं.

0: और आज के दिन मैं और उर्वशी आपके यार हैं।
1: यस।
0: वैसे जैसे उर्वशी मैंने तुमसे कहा था ना, आते हुए मुझे थोड़ी सी सावन बरसे,
1: थोड़ी सी जो ड्रिजलिंग आपके ऊपर हुई, और अब मुझे लग रहा है कि मैं उसी रास्ते से आई थी। आप पहले आ गए तो शायद आपको वो चार बूंदे मिली, मुझे नहीं मिली।
0: देखा वक्त कितना कीमती होता है।
1: यस।
0: इसलिए तो कहते हैं वक्त पर जो भी बात है वो कह दो, ये मत इंतजार करो कल परसों तरसों बाद में। इस बाद के चक्कर में ना बाद बाद में ही बात निकल जाती है।
1: सही कहा।
0: वेल विद दैट मैं अगला गाना सुनाना चाहती हूँ टू यू एंड फॉर ऑल द लिसनर्स टू फील मैंने जो महसूस किया।
1: प्लीज।
0: और जब वो बूंदे, जो बारिश की बूंदे जब हल्की हल्की मेरे चेहरे पर पड़ी थी, तो मुझे एक ही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, विच वॉज हरिहरन एंड साधना सरगम जी का वो गाना, पता है तुम्हें,
1: सावन बरसे तरसे दिल। Yes.
0: Well, that's the next song. And मिलेंगे हम आपको हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर में आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, जहां पर आप सुनेंगे न्यूज और न्यूज के उस पर रिक्वेस्ट आर।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 1:05 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ, और अगर आप उर्वशी का इंतजार कर रहे हैं तो वो इस वक्त कुछ देर के लिए ब्रेक पर गई हैं, जो तुरंत हाजिर होंगी। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू, आप सबकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुकी है, और आज का जो हमारा स्केड्यूल है वो इस तरह है कि ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, यानी कि हमारे पास कुछ लगभग 1 घंटे में से हमारे 15 मिनट तो नहीं है, और इस बचे हुए जो वक्त है हमारे पास, बचे हुए वक्त में आपके जितने गाने हो सकेंगे हम वो प्ले करेंगे, ठीक है। और हमारा जो पहला रिक्वेस्ट आया है वो है विजेंद्र घाटोल जी अकोला से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये अगला गाना, और उसके बाद द नेक्स्ट सॉन्ग किसकी होगी रिक्वेस्ट, वेल उसके लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा एफएम रेनबो, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

117 ऑन द क्लॉक और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं. वेल मैं आपको बता दूं कि उर्वशी हमारे साथ कितने लिसनर्स जुड़े हैं, तुम तो बात कर ही रही हो, लेकिन हमारे लिसनर्स को भी बता दूं कि आप सभी के मैसेजेस मैं पढ़ रही हूं एंड हमारे

0: साथ 11 बजे से इनफैक्ट लोग जुड़े हुए हैं, पोस्ट बॉक्स सुनते सुनते, म्यूजिक कैफे सुनते सुनते। वी हैव प्रवीण बहाड़कर हमारे साथ, आर्यन सोमवंशी जलगांव से, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अवनी दामोदर कड़ू, अविनाश दामोदर कड़ू वाड़वन टीगरे पाड़ा से। यार ऐसे ऐसे जगह से लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि कभी कभी लगता है कि हम ना जानते हुए कितने लोगों से जुड़ चुके हैं ना यार।
1: और कभी कभी वो जगह का नाम भी नहीं पता होता है हमें और वहां से मैसेज आ जाता है।
0: एक मिनट, पहले तुम ये बताओ, तुम बाहर क्या वड़ा पाव खाने गई थी?
1: मन तो बहुत था लेकिन नहीं, मैं सिर्फ पानी भरने गई थी ब्रेक पे। लेकिन जब से आपने बोला है ना कि बाहर बारिश हुई थी, तब से एक हरी मिर्ची और वड़ा पाव की याद तो मुझे भी आ रही है।
0: मैं वही पूछने वाली थी कि अगर आई हो तो खाली हाथ क्यों आई हो, अगर तुम खा कर आई वड़ा पाव।
1: है ना, ऑफिस के नीचे सारी टपरियां बंद है।
0: कोई नहीं, हमारे पास ऐसे शुभदा जी का इनवाइट अभी भी पेंडिंग पड़ा है।
1: बड़े हैं हम, उसमें पाव लगा
0: के शिवदा जी रेडी रहिएगा। वेल अंजू अंधेरी इससे हमें बहुत सारे फ्रूट भेज रही है हम दोनों के लिए।
1: थैंक यू
0: बाबा दादर से, बाबा दादर से, प्रकाश शिंदे, विठल मुंगा से, संदीप कुमार, संजय दर्शन, प्रमोद चिंचोलकर, शुभदा जी दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से, महेश बोहारा, पंकज माहौर, हीरामणि वर्मा, इनफैक्ट इनके साथ ये हमें मैसेज कर रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ओए हो, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, काफी इंटरेस्टिंग नाम है वैसे। राम प्रजापति हमसे जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट इन्हीं का गाना नेक्स्ट होने वाला है प्ले।
1: यस, और बहुत जो अभी हमने गाना सुना था वो फिरोज सिगरपुरिया ने हमको रिक्वेस्ट किया था, डीडीएलजे का गाना, तो हमने उनको मेहंदी लगा के रखना सुना दिया।
0: वेल ऑल्सो उन्होंने एक और चीज बताई है जो मैं तुमसे भी शेयर कर रही हूँ, कहते हैं उन्हें हमारी जुगलबंदी काफी पसंद आ रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
0: वैसे हम ऐसे ही जुगलबंदी पर्सनली भी करते रहते हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है शो के लिए।
1: हम बीच में हम ऐसे ही बातें करते हैं,
0: हम दोनों ही इतने बातूनी है कि बातों बातों में खाने की बात आ ही जाती है।
1: तो अभी बातों को थोड़ा रोके और बता दे किस किस के गाने आने वाले हैं। तो राम प्रजापति जी ने, जिनको बहुत मजा आ रहा है हमारे साथ, उनका ही गाना आपके प्यार में हम सवरने लगे फ्रॉम राज फिल्म हम बजाने वाले हैं। उसके बाद हम बजाएंगे पंकज माहौर जी की फरमाइश करण अर्जुन फिल्म से जाती हूँ मैं, और फिर बजेगा एक बहुत ही खूबसूरत अजय साखरे जी की फरमाइश पे हिंदी मीडियम का गाना तेनू सूट सूट कर दा।
0: Well, इसमें थोड़ा ट्विस्ट करेंगे लेकिन वो ट्विस्ट हम आपको बताएंगे नहीं, आप सुनिए फिर वो ट्विस्ट समझेंगे, मतलब रीऑर्डर बेसिकली।
1: यस, और मैं बस आपको आपके नाम और लिसनर्स के जो फरमाइश है वो बता रही हूँ, और फिर इन गानों के पार फिर से मुलाकात होगी।
0: वेल लेट्स सी, नेक्स्ट सॉन्ग इज अलका याग्निक की आवाज में।

142 ऑन द क्लॉक और ठीक 2 बजे हमारे जाने का वक्त, क्योंकि आप सुनेंगे ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज इन इंग्लिश. लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नेक्स्ट सॉन्ग आप उससे सुने उससे पहले, आज राकेश रोशन जी का, वेल वी डोंट हैव एन एनिवर्सरी, बट पंकज माहौर जी सुनना चाहते थे उन्हीं के आवाज में, उनका ही

0: गाना. इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली गेट बैक टू पंकज मावर जी का मैसेज. तब तक आप मुझे बताओ कि अगले 3 गाने किसके हम प्ले करने वाले हैं.
1: सो बेसिकली हम एक मूड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. अभी हमने जो 90s के गाने सुने, 2000 के सुने, अब हम थोड़ा रेट्रो जा रहे हैं. तो हमारी जो कुछ रिक्वेस्ट है, एक शुभलक्ष्मी मुस्तकर जी की है पिया बिना, जो अभिमान फिल्म का गाना है वो बजाएंगे. उसके बाद हम एक गाना बजाएंगे ब्लैकमेल फिल्म से, जो प्रमोद चिंचोलकर जी ने रिक्वेस्ट किया है, पल पल दिल के पास. और उसके बाद हम अभी जो हमने एक गाना सुना क्वीन का, वो मैं नाम लेना भूल ना जाऊँ इसलिए, मुकुंद कुलकर्णी जी.
0: ये तो मुझे याद है, मुकुंद कुलकर्णी जी पूना से हमारे रेगुलर लिसनर. इनफैक्ट अब लेट मी ऑल्सो टेल यू, पंकज जी ने जो रिक्वेस्ट किया था गाना जाती हूँ मैं, राजेश रोशन जी के गाने की लिस्ट में से एक है, बिकॉज उन्होंने ये कंपोज किया था गाना. सो उनकी आज है एनिवर्सरी एंड डेडिकेटेड टू हिम उन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया था.
1: हाउ स्वीट, थैंक यू.
0: वेल चलिए 3 गाने बैक टू बैक सुनाते हैं और 3 गानों के उस पार आपको मिलते हैं विथ मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट. और ऑफकोर्स आपको गुड बाय कहने जरूर आएंगे हम.
1: ठीक है.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 151 ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना एंड
2: मी आरजे उर्वशी।
1: वेल, आप सभी के मैसेजेस आए हैं, काफी मैसेजेस रह गए हैं, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू
2: इट। यस यस, लेकिन इतने मैसेजेस आते हैं भावना कि हम कितना भी करें कोशिश लेकिन कुछ कुछ नाम तो हमसे छूट ही जाते हैं, तो उन लिसनर्स से हम पहले से ही बोल देते हैं सॉरी।
1: ये हमारे लिसनर्स को ऑलरेडी पता है और पता है ये चीज मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि कल पर विश्वास रखो, ट्राई टिल यू सक्सीड, आज नहीं तो कल सही।
2: yes.
1: कोशिश करते रहना चाहिए। इनफैक्ट हमारे तो शाम का रिक्वेस्ट आर भी है 7 to 8, हम तुम वहां पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आज नहीं तो क्या, कल दोबारा कोशिश कीजिए, कभी ना कभी तो आपकी बारी आ ही जाएगी। एंड जब तक आपकी बारी ना आए, जो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जितने हैं उतने में खुश हैं, तो बाकी लोगों के रिक्वेस्ट के गाने हैं उनको एंजॉय कर लीजिए। एंड कई बार हमारे लिसनर्स पता है इतने कोऑपरेटिव होते हैं, वो कहते हैं मैडम आज हमको गाने की रिक्वेस्ट नहीं देनी है, आप उन गानों में हमारे पास नाम शामिल कर लीजिए। तो जो दिल खुश होता है, कितने अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिसनर्स पता है। और कभी कभी बहुत शरारती भी होते हैं, एकदम बच्चों की तरह, इन्हें पता है कि मुझे खाने की बात पर भूख लग जाती है, फिर भी शुभदा जी, अंजू जी, ये सारे लोग हमें रेसिपी भेज कर, यहाँ पर आपको भी लगी ना भूख,
2: सबकी बातें सुन सुन के लग रही है
1: वड़ा पाव, मिर्ची, चाय। देखा, ये यही है इनकी आदत, इतने मस्ती करते हैं ना हमारे लिसनर्स, बता रही हूँ। वेल, इनके अलावा सुरेश, काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा दादा।

0: विठल मुंगासे। संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भ्रात मक्कर, भ्रत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर। एंड वी ऑल्सो हैव महेश बुहारा अजमेर राजस्थान से, हीरामणि वर्मा एंड राम प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष भालचंद्र पाटिल वाढ़वन जिनके लिए हम गाना बजाएंगे नेक्स्ट। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनके गाने आपने अभी सुने रिक्वेस्टेड। शुभदा जी हमारे साथ है, फिरोज सिगनपुरिया, रजनीकांत पाटिल वाधवन है हमारे साथ, मुकेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बालवीर सिंह इनके इनके जो लिस्ट होती है ना, मुझे बहुत मजा आता है इनका नाम पढ़ने के लिए। इट
1: इज लाइक परिवार साथ में सुनता है।
0: हाँ, साथ में सुनता है और बीट बॉक्सिंग लगता है। इनके नाम भी कितने अच्छे हैं ना, पीठ पर बैठते हैं गानों की तरह, एकदम लय में है सबके नाम। हेमराज भारद्वाज छत्तीसगढ़, नए नाम दिख रहे हैं मुझे, आई एम वेरी अमेज्ड। अच्छी बात है, आप भी जुड़ जाइए हमारे इन्वो फैमिली में। कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से, वेलकम टू एफएम रेनबो फैमिली। अभिजीत गवहानकर हमारे साथ हैं और ये इनके फैमिली के जो एक नाम है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रणीता सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर और लाडला आपका भी और मेरा भी आजकल टुक टुक गवहानकर। ये मुझे बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा लगता है, बहुत क्यूट सा टुक टुक, कितना प्यारा नाम है ना। एंड अजय साकरे इंदौर से, प्रकाश शिंदे जी की रिक्वेस्ट आज रह गई है क्योंकि आज बहुत सारे मैसेजेस थे तो पॉसिबल नहीं हुआ है। दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं, विजय महोबिया हैं, श्रीमती कमला देवी महोबिया, अनाया महोबिया भैयू महाराज और बेबी लुसियान भी। एंड ये है शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। विद दैट प्रमोद चिंचोलकर जी, पंकज महौर, संजय दर्शन, मुकुंद कुलकर्णी पूना से, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हमारे साथ हैं, वेलकम। थोड़े से लेट हैं शायद से आप, या फिर मैसेज आपने लेट किया है। वेल, विद दैट ये हमारे लिसनर्स थे जो हमारे साथ जुड़े थे और उन लिसनर्स को भी थैंक यू जो बस सोचते रह गए और हमें मैसेज नहीं किया उन्होंने,
1: पर हमें सुन रहे थे। भी होते हैं ना कि जो बस हमको सुनते हैं।
0: एग्जैक्टली, तो आपके लिए भी वेरी वेरी मच ग्रेटफुल है हम और थैंक यू सो मच जिन्होंने हमसे कॉल पर बात की उनके लिए भी। तो क्या बात, कोई बात नहीं, अगर आप हमें मैसेज नहीं कर रहे आप कॉल कर सकते हैं और अगर नहीं भी हो पाई है बात तो भी हमें पता है आप हमें सुन रहे हैं।
1: यस एग्जैक्टली, तो इसी बात पे हम अगला गाना बजाएंगे और अब जब भी मुलाकात होगी आई होप जल्दी हो, है ना भावना?
0: डेफिनेटली, एंड आई होप हम दोनों दोबारा एक साथ मिले।
1: जी हाँ,
0: विद दैट चलिए अब लेते हैं मैं और उर्वशी इजाजत विथ अ वेरी हैप्पी संडे आप लोगों के लिए और इस संडे की आफ्टरनून को एंजॉय कीजिए इस अगले गाने के साथ।
1: जी हाँ।

0: double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
3: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
4: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले

0: सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने

आयुर्वेद में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है लव यू जिंदगी और वक्त हो चला है 5:02:47। मेरा नाम है वसीम और मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ रात 8 बजे तक। 5 से 6 बिल्कुल होगा लव यू जिंदगी, उसके बाद अंदाज़े बयां और उसके बाद हम तो बीच बीच में अपडेट्स डेफिनेटली आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं इस प्रोग्राम लव यू जिंदगी में और शुरू करता हूँ इन खूबसूरत गानों के साथ और फिर बातों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए मेरे साथ 8657661071 पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाइट वर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल.
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी. मैं वसीम आप लोगों के साथ. 5:16:45 हो चुके हैं. प्रकाश, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग. शुभदा जी, आपका भी स्वागत है. और आप सभी लोग, राजेंद्र परमार, विजेंद्र अगरकुल अकोला से, अरविंद कुलकर्णी, पंकज, श्रीपद, जितने भी लोग इस वक्त ट्यून इन है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों के मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं. और शुभदा जी, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी एज़ वेल. उम्मीद है कि जो गाने मैंने आप लोगों को सुनाए वो आपको पसंद आए होंगे. और अभी गाने और भी हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि ये बातों का सिलसिला भी जारी है. वैसे ब्रदर्स डे मनाया जा रहा है, अनौपचारिक अवकाश, मतलब अनऑफिशियली. और इसे एक मुख्य रूप से अमेरिका में 24 मई को मनाया जाता है. इस दिन की शुरुआत भाइयों और बहनों के बीच के जो एक पाकीज़ा रिश्ते की बात अगर करें और उसके बारे में है, ये जश्न मनाना, मिलना मिलाना, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग, जो कह लो, एक्सप्रेस करना है कि आप, नोक झोंक तो होती रहती है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो जो एक प्यारे भाई बहन का, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो ताउम्र ज़िंदगी भर चलता रहता है ना. हमारे यहाँ भी तो है, हमारे भारत में रक्षाबंधन, और उसे भी तो मनाया जाता है बिल्कुल इसी तरह से. इनफैक्ट और भी कई तरीके, वो तो रक्षाबंधन की बात, मुझे याद है एक इंटरव्यू जो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार के बीच में भी हुआ था, लेकिन फिलहाल उसका जिक्र नहीं. अब फिलहाल हम करेंगे गानों की तरफ रुख, और वो बात मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा ज़रूर. और उसके लिए आपको बने रहना होगा 107.1 FM रेनबो के लव जिंदगी प्रोग्राम में. फिलहाल कुछ गाने और आप लोगों के लिए, ये शाम का वक्त, सुकून भरा, गर्मी, गर्मी के बारे में जिक्र करेंगे. स्टे ट्यून, दिल से दिल तक.

5:23 और 53:54 हो चुके हैं। आप लोगों के कॉल्स आना शुरू हो गए। प्रणव शिंदे, थैंक यू सो मच। बचपन की वो शैतानियाँ, वो लड़ाई और प्यार, भाई बहन का रिश्ता होता है दुनिया सबसे यार अलग, मतलब सबसे यार। वो भले ही मुझसे दिन भर लड़ता रहे लेकिन मेरी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तैयार। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर एक पल में मान भी जाते हैं। भाई बहन का प्यार होता है ऐसा ही, जो बिन कहे सब कुछ समझ जाते हैं। बहुत अच्छे प्रणव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, ये नंबर है 535। महेश, आपका भी शुक्रिया। विजेंद्र जी, पंकज, थैंक यू सो मच, आप लोग सब बने रहिए। एक और गाना आप लोगों को मैं सुनवा देता हूँ और उसके बाद अपडेट्स होंगे, फिर उसके बाद लौट कर फिर एक बार आप और हम आ जाएंगे इसी प्रोग्राम लव यू ज़िंदगी पर, फिर वो गानों का सिलसिला जारी रहे।

0: से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

5:36 और 46-47 सेकेंड्स हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है लव यू ज़िंदगी, मैं वसीम आप लोगों के साथ, और बड़ी तेज़ रफ्तार से ये वक्त निकल गया। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जब आया था तो मैंने जो गाने प्ले किए थे आप लोगों को अगर याद हो, और वो थे बरेली की बर्फ़ी और बर्फ़ी से। अब दोनों ही गाने बहुत ही कमाल थे, एक बैरागी और दूसरा आपने आशियाँ जो सुना था, क्या खूबसूरती से उसे लिखा गया। स्वानंद की राइटिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स बहुत ही कमाल है, और यू नो होठों पे कुंडी लगा के या ताले, कमाल का सोच हो, कमाल की थिंकिंग, एंड उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले ज़िंदगी। कुछ गुलजार साहब यू नो शाम को खिड़की पे हौले हौले चांद आएगा, नंगे पाँव चांद आएगा, वो सारे ख्याल कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वही फिर कभी गाने बनकर एक बार फिर से लौट आते हैं अलग अलग तरह से। और बहुत ही खूबसूरत ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इसी को हम सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो यही बता रहे हैं कि आप लोग इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं। राजेंद्र जुठानी जी, महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और ये गर्मी पता नहीं बहुत पढ़ी लिखी होगी, इतनी डिग्री है इसके पास। खैर जोक्स अपार्ट, आप लोग सुनिए ये गाने और इन्जॉय करिए, बने रहिए मेरे साथ। कुछ और बातें करते हैं बारिश को लेकर जो आने वाली है अनकरीब, यानी शॉर्टली। स्टे ट्यून, दिल से दिल तक।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: 5:50 हो गए हैं और 20-21 सेकंड्स हो चुके हैं। रिलैक्स एंड चिल शामिन कह रही है और चाय बिस्किट, ऑफकोर्स आप लोगों ने इस पर अमल किया होगा। वैसे मैं बारिश की बात कर रहा था, बारिश का मौसम इसलिए भी ख़ास होता है क्योंकि हम ऑफकोर्स एक शरीर राहत कहें या मन की शांति कहें या प्रकृति नेचर की बात कर लें या जीवन में एक नएपन का गहरा एहसास, जो भी कह लें आप, ये एक इसके जो आने का इंतज़ार है वो बहुत ही ख़ास है और इतना अच्छा लगता है इसका इंतज़ार कि मैं आपसे क्या बताऊं। और वैसे ही मैसेजेस आप लोगों के मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं। रजनीकांत, आपका फ़ोन शायद आप कर रहे थे, और शुभदा थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। रजनीकांत पाटिल वाधवन, मीना जी नमस्ते, ट्यून इन, थैंक यू। पंकज, देखो इत्तेफाक की बात यह है कि आपने जिस गाने का जिक्र किया हमने वो सुना भी दिया। अंकित, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं इस वक्त मेरे साथ, और अब हमारे पास धूप वाले यानी कुछ ही दिन बचे हैं, बारिश आ जाएगी तो ये सनसेट कहाँ ऐसे देखने को मिलेगा। तो जितने भी व्लॉगर्स हैं वो जा सकते हैं ऑफकोर्स जू बीच, गिरगाम चौपाटी और सब, जहाँ भी वो जाए वो मोमेंट्स को टू एंड फ्रो कैप्चर कर सकते हैं, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, तो जैसे भी कोई एक तरीका हो, और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर आप कैप्चर कर सकते हैं बारिश इससे पहले कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। और साथ ही मानसून किट भी आप रख लिया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गर्मी, जैसे इसकी बात की, हर मौसम का अपना एक अलग अंदाज, एक ज़रूरत है, और मज़ा तो नहीं कह सकते इसमें लेकिन सज़ा भी नहीं कह सकते। तो आप लोग, कुदरत का ये निज़ाम है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं। और फिलहाल इस प्रोग्राम में भी हम वही करेंगे और अगले ट्रैक्स की तरफ जाएंगे। 6:05 पर न्यूज़ अपडेट्स होने वाले हैं और उसके बाद अंदाज़े में आप स्टे ट्यून्ड मेरे साथ। ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी।

0: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
1: जी हाँ, आप सभी लोगों का खैर मकदम है, आदाब। स्वागत करता हूँ मैं इस प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज़े बयां। 6:16:07 हो चुकी है और आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ। मैं हूँ वसीम और उम्मीद है कि जो ये वक्त गुजरा लवी ज़िंदगी वाला वो बहुत अच्छे से, और आप लोगों के फीडबैक मैसेजेस तो मुझे यही बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और अभी से कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजिएगा, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अब वो उसका वक्त है और 7 बजे से जो अपडेट्स आना शुरू होंगे उसके बाद 7:10 से हम शुरू करेंगे प्रोग्राम हम तुम, जिसमें डेडिकेशन और रिक्वेस्ट होगी, तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट लेना शुरू करेंगे। नो अली मैसेजेस, थैंक यू सो मच। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम अंदाज़े बयां में, इस महफिल में, इस अंजुमन में। आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए, बताइए कौन सी फिल्मी गज़ल का शेर मैंने पढ़ा है। 8657661071 पर आप अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं, हम भी तो जाने के आप कितना गौर से सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

इस बहाने से देख ली मगर दुनिया, हमने जस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। मतलब दुनिया को देखना एक बहाना हो गया। कमाल की राइटिंग, कमाल की बातें। वैसे मैं आप लोगों को एक ख्याल की तरफ लेकर चलता हूँ, और वो ये है कि एक फिल्म थी जिसके बारे में जिक्र किया था बड़ी मासूमियत के साथ शेखर कपूर साहब ने, और उसमें वो कह रहे थे कि अगर वो जुमेरात नहीं होता, वो थर्सडे गुरुवार नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, इस वक्त इंटरव्यू नहीं दे रहा होता और बात नहीं कर रहा होता उसके बारे में। आखिर वो कौन सी फिल्म है जिसके बारे में वो इशारा कर रहे हैं कि जो फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे नहीं, और यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहने लगे कि अब ये फिल्म नहीं चलने वाली और हम इसे हटाना होगा। उसके बाद ऐसा क्या हुआ उस थर्सडे को जो वो फिल्म जब चली तो ऐसी के रुकने का नाम नहीं। वो फिल्म का नाम अगर आप हमें बता सकें 6576601071 पर, मैं आपको सुनते रहना, ये गज़लों को सुनते रहना, कहीं ना कहीं एक इशारा मिल ही जाएगा आपको, इशारा मिल जाएगा कि आखिर वो गज़ल किस फिल्म की है। क्योंकि उसमें मैं कह रहा हूँ ना, जिस फिल्म का नाम, वो उसमें इस गज़ल को प्ले करूँगा ज़रूर मैं इस आर में, तो आप ज़रूर बने रहिएगा और गौर से सुनिएगा, है ना, स्टे ट्यून्ड मेरे साथ। और आपने कॉल किया था जनाब हमें, और उन्होंने कहा था एक रिक्वेस्ट के बारे में, जगन्नाथ वैद्य जी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वर्ली से भी हमें एक कॉल आया था। तो आइए आप और हम सुनते हैं निदा फाजली साहब ने क्या कहा है और जगजीत साहब के और चित्रा जी के ज़रिए इस अंदाज़े बयां में सुनते हैं दिल से दिल तक।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

मैंने आप लोगों से जवाब देने के लिए कहा था और मैं ये रुका था, मैं सोचा था कि ये गज़ल प्ले करूँगा, फिल्मी गज़ल, और उसके बाद आप लोगों को जवाब पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा सुनते हैं और आप लोगों ने मुझे बहुत पहले ही जवाब दे दिया है इस बात का, और अच्छा लगा मुझे ये जानकर। बिल्कुल सही वो फिल्म जो आप लोगों ने कहा, और संजय तुम भी सही, विजेंद्र, प्रदीप, आनंद कृष्ण, और प्रकाश, राजेंद्र जुठानी, थैंक यू सो मच, पंकज वैदेही, थैंक यू, अजय साखरे इंदौर से, महेश बोरा, आप सभी लोग। चलिए सुनते हैं वो फिल्मी गज़ल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर वो जुमेरात नहीं होता, व्हाट इफ देयर वाज नो थर्सडे, नॉट दैट वन स्पेशली, जहाँ पर ये फिल्म हाउसफुल हो गई और उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। आइए सुनते हैं ये फिल्मी गज़ल। वैसे आप लोगों को ये भी पता होगा कि लेट भूपेंद्र साहब बहुत अच्छा गिटार भी प्ले करते थे। बताऊंगा कभी उनके लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स जिसमें उन्होंने गिटार प्ले किया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
1: आदाब अर्ज़ है, 6:51 और 38:40 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है अंदाज़ बयां, और उम्मीद है कि इस अंदाज़ को आपने बिल्कुल सराहा है और इसे पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उमराव जान जिसकी गज़ल का मैं जिक्र कर रहा था, वैसे फिरोज़ तुमने एक गज़ल का जिक्र किया है और वो ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है हद निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। बहुत खूबसूरत, इसी का है ना। अब वही तो है कि सब कुछ एक ही एल्बम में, एक ही फिल्म में। फिल्मी गज़लों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो भी कमाल है कि भारतीय फिल्मों में उर्दू गज़लों को शामिल करने की एक परंपरा। पहली भारतीय जो टॉकीज फिल्म थी, और टॉकी फिल्म यानी आलम आला 1931 में जो शुरू हुई थी, तब से लेकर 1930 के दशक से 1960 के दशक तक गज़लें काफ़ी लोकप्रिय रहीं। इसी दौरान बेगम अख्तर और मेहदी हसन ने गैर फिल्मी गज़लों को लोकप्रिय बनाया, लेकिन लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जैसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों ने गज़लें गाना जारी रखा। लेकिन फिल्मों में इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन 1990 में एक फिल्म आई, उसके बाद ये सिलसिला फिर से चल उठा। और वो कौन सी फिल्म है ज़रूर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और बताना चाहूंगा, और उसके लिए आपको बस एक छोटा सा इंतज़ार करना होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि न्यूज़ अपडेट्स होने वाले हैं 7 बजे से, जो 7:10 तक रहेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा हम तुम, और उसमें आप सभी लोगों की जो भी रिक्वेस्ट डेडिकेशंस है वहाँ पर पूरी की जाएगी। उससे पहले आप लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है, और दिग्दर्शन और कविता थैंक यू सो मच मैसेजेस के लिए, मेहर अरोरा और पंकज माहौड़, संजय दर्शन, राजेंद्र जुठानी, राकेश आनंद, प्रदीप, सभी लोग, प्रकाश, वेरी थैंक यू। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। 1990 में आखिर वो कौन सा गाना या कौन सी फिल्म थी, कौन सी फिल्मी गज़लें थी जिसको लेकर ये सिलसिला चल पड़ा, उसी फिल्म का एक गीत मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और वो टाइटल ट्रैक है। तो आइए सुनते हैं, यहाँ पर हम अंदाज़ा लग ही जाएगा आपको। स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे 7:10 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
2: सात बजकर 10 मिनट और 51 सेकेंड्स हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी से घड़ी मिला लीजिए और ताल से ताल ये प्रोग्राम है हम तुम आप और हम इस वक्त साथ और मैं रहने वाला हूँ 8 बजे तक। तब तक जितने गाने मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश करता हूँ जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है मैं ज़रूर प्ले करूँगा। सुनीता वर्ली से प्रकाश मीना जी थैंक यू सो मच। अच्छा मैच भी देख रहे हैं आप और गाने की रिक्वेस्ट भी साथ साथ चलिए ये भी ठीक है। और राकेश माथुर शुभदा जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी के मैसेजेस के लिए। चलिए अब आप लोगों की रिक्वेस्ट प्ले कर देता हूँ और सुनते रहिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ हम तुम पर।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये प्रोग्राम हम तुम चल रहा है आप लोगों की रिक्वेस्ट और बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं और ये सांस रिप्राइज वर्जन भी सुना आपने, थैंक यू सो मच। और आपका मैसेज हम सबको, प्रकाश, मीना जी, आप सभी लोगों का, सुनीता जी, आपका भी मैसेज हमने जो यहाँ पर आप लोगों को सुना दिया। एक बड़े कमाल का थॉट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये भी तो जीत है, ये भी तो जीत है कि आपने अभी तक हार नहीं मानी है। कैसा एक खूबसूरत सा ख्याल है ना, कितना इंस्पायर करता है, अच्छा लगता है ना सुनकर। बिल्कुल, अब आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जो आप लोगों की और रिक्वेस्ट है, शुभदा जी, आप सभी जितने भी लोग हैं, जहाँ तक रिक्वेस्ट पॉसिबल होगी मैं ज़रूर प्ले करूँगा। आप लोगों को बस बने रहना है इस प्रोग्राम हम तुम में। मैं बस एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और उसके बाद एक बार फिर से गानों का सिलसिला जारी हो जाएगा हम तुम पर। आप और हम बने हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर 107.1 MHz, दिल से दिल तक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: सात बजकर 43 मिनट और 43:44 सेकंड्स हो चुके हैं। आप हैं बिल्कुल हम तुम प्रोग्राम पर 107.1 MHz और मैं हूं वसीम आप लोगों के साथ यहां पर बिल्कुल लाइव। वैसे कुछ रिश्तों की अगर बात करें तो बिल्कुल उन खाली लिफाफों के जैसे होते हैं। कौन से कुछ रिश्ते उन खाली लिफाफों की तरह होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। करते हैं आप भी ऐसा, है ना? कोई तो वजह होगी, कोई तो बात ऐसी याद आती होगी जिसकी वजह से उसे अपने पास रख लेते होंगे आप, है ना? बस ये ख्याल था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया जाए। और देखिए वक्त इजाज़त दे रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचे और साथ ही साथ इतने सारी रिक्वेस्ट हैं, किसी की रह जाएगी, किसी की प्ले हो जाएगी तो माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी की रह गई, लेकिन अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसे मैं शामिल करूँ। फ़िलहाल जो भी रिक्वेस्ट अभी मैं यहाँ पर सुनाने वाला हूँ आप लोगों की, जितनी भी बाकी है, फिरोज़ तुमने भी रिक्वेस्ट की थी, दिए जलते हैं कि हमने सुना दी, और जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त मैसेज भेज रहे हैं सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून मेरे साथ। बस एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आप ज़रूर सुनते रहिएगा ये प्रोग्राम हम तुम, और ये गानों का सिलसिला जारी रहेगा बिल्कुल 8 बजे तक। स्टे ट्यून्ड।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक। चलिए, मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जितने भी आपने गाने सुने पसंद आया आपको, और आप लोगों की जितने लोगों की रिक्वेस्ट थी वो हमने प्ले कर दी। और कोशिश यही रही बस कि आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने मैसेज किया उन सबको, जो जो गाने वो सुनना चाहते थे, उनका नाम वो सुनना चाहते थे, हमने सब वो कह दिया ज़्यादातर। और जिनके रह गए उनसे ज़रूर मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब भी आएंगे तब हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। बस आपको वो गाने याद रहें और हमें आप, बस आप बने रहिएगा। अब कुछ और एक आध गाना है, एक और रिक्वेस्ट है, उसके बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए और बातों को, ख्यालों को सुनने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर। ये गाना आप लोगों के लिए, स्टे इंस्पायर्ड।

0: स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।

0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है ये। पूर्णता, परोपकार, अध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है उसका जो रेडियो डिवीजन है वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिस

0: अपने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: आपने स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
1: सुस्वागतम। अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआईट।
0: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
1: जी,
0: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थीं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
1: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
0: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
1: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
0: ओके।
1: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युववाणी में एग्जाम दिया था एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पर काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
0: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया। I'm sure आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
1: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आंखों से देखा है।
0: बिल्कुल।
1: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से।
0: डेफिनेटली।
1: एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहाँ पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ।
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड।
0: जी,
1: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
0: बिल्कुल। डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
1: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए होता है
0: जी,
1: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इसका एक डाउनसाइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है, मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे, आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है उसके बाद गाड़ी चलाता है, तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बीच में। बिल्कुल जी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता है, क्या खास डिफरेंस है, और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
1: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
0: जी,
1: तो
0: जी, उस पे भी आएंगे हम आगे।
1: हाँ, वो तो फर्क, बहुत फर्क है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज्यादा सशक्त है, लेकिन जब

0: टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म या आप कह सकते हैं कि एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन बिहाइंड दैट. आई फील दैट वे AIR हैज द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
1: राइट जी. अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुँचेगा, या क्या AI का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविज़न के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है. लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल इंटेलिजेंस विच इज़ अ ह्यूमन एसेट. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का ज़माना देखिए इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे. वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे. लेकिन और एक चीज़ और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता
1: जी, है. मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं हैं और उनको अक्सर ठगा जाता है.
0: बिल्कुल,
1: ये होता है, तो ये नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है.
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम करती है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है. किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातों में या देख सकते हैं. तो उसपे पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी. पहली बात तो हम आप जहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है. तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए. एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं.
1: तो क्या क्वालिटी में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स. सी, डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर, कि आपने कहीं पे गलत बोल दिया या आपकी आवाज में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
1: राइट.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. सो अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
0: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीजों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीजें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीजें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीजें आज के डेट में स्वाभाविक हैं। तो आप अगर उसको कुछ चीजें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे, तो वो तो एक कहीं पे है। और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो,
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो कठिन है, यस
1: राइट।
0: लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है, इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेंजी भी सुनती। मैं अभी देख रही थी इंटरनेट पे, मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है वहाँ पे AIR का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
1: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
0: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस। और शुरू में मुझे याद है जब ने ज्वाइन किया था उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास 10 सर्विस में, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है। तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू द सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स।
1: ओ माय गॉड।
0: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे, तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल। तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद।
1: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
0: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वे थे एंड रेस्ट ऑफ ऑल द पीपल वे बॉयज, एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर who stood by me and I am the only child, तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया, लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई, तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे, तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी, शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती।
1: ओके
0: एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, माय फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people, और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली
1: और क्वाइट अ सपोर्ट,
0: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
0: देखिए बहुत सारे इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है लेकिन उस समय तो जान पे आई रहती है. एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफ़ी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए आज के ज़माने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन, बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे.
0: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का बाहर एक ऑडिटोरियम में. सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल, बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसत में आई होती है
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम.
0: यस इट वॉज ड्यूरिंग, यस
1: 90 years हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही. तो इन 90 years का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं तो यही बोलूँगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
1: जी.
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है, और आज की डेट में जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे, यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास्कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
0: अगर सच बताऊँ, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
1: बिल्कुल.
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज, इलाहाबाद, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे.
1: ट्रू.
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं.
0: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माय इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: रमता गया
0: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है,
1: मल्टीटास्क. मैं वही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और

0: अनेक खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: रंगी महफिल की शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ मैं इस वक्त जर्री। ये शहर, ये गलियां जब जब मेरे सामने आए, किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए।

आप सुन रहे रंगी महफिल, आपके साथ इस वक्त मैं जरीन। मोहब्बत हमेशा मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत एहसास छोड़ जाती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस मौसम की तरह आते हैं, थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश और ढेर सारी यादें देकर चले जाते हैं। वैसे एक बात मानिए, कुछ रिश्ते उम्र भर साथ नहीं चलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेमकसद हैं। तो अगर कोई रिश्ता आज आपके साथ है तो उसकी मौजूदगी को महसूस कीजिए, हर मुस्कुराहट, हर बात, हर पल को जी लीजिए, क्योंकि ये जो आती जाती मोहब्बत है ना, जो पूरी हो नहीं पाई, उससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं होती। क्योंकि मोहब्बत की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि वो हमेशा नहीं रह पाती, लेकिन जब तलक रहती है ना, दिल के बेहद करीब रहती है। कुछ कुछ इस गजल की तरह।

आसपास हर जगह बेशुमार आदमी है, भीड़ इतनी कि चेहरों का हिसाब रखना मुश्किल है। लेकिन यह अजीब बात है ना कि इसी भीड़ के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला है। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के कानों में एयरफोन, किसी की जिंदगी ऑनलाइन है, लेकिन दिल फिर भी खाली खाली सा है।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जो रिश्ता बहुत खास होता है वही सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। अक्सर डूब जाते हैं इस खूबसूरत गजल के एहसास में और महसूस करते हैं उन लम्हों को जो शायद आज भी कहीं दिल के किसी कोने में जिंदा है। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद ब खुद आंखों में उतर आते हैं। ये अगली गजल आप तक हम पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई याद इसके मार्फत ताजा हो जाए।

0: ही स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: 11:50 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। अब एक ऐसी गजल जो दिल की गहराइयों को छू जाती है, मोहब्बत जुदाई और अधूरे वादों की कहानी बयां करती है ये गजल। साहब कभी कभी ये रिश्ते जो होते हैं ना उसमें कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ एहसास छिपे होते हैं जो वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं और बस रह जाती है तो उनकी यादें। आज की गजल भी कुछ ऐसा ही एहसास लिए हुए है। वो जो हम में तुम में करार था, ये गजल उन अधूरी बातों की है, उन खामोशियों की है जो कभी लफ्जों में ढल नहीं पाए। उस्ताद अहमद हुसैन साहब की आवाज में ये गजल आप तक पहुंचा रही हूं रंगे महफिल में।

कह सकते हैं कि सुकून कोई बड़ी चीज नहीं होती इस दुनिया में, छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे माँ के हाथ का खाना, पुरानी यादों की खुशबू, या फिर बारिश की पहली बूंद। कभी कभी हमें बस रुकना होता है, खुद को वक्त देना होता है। और रुक रही हूँ मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो चुका है। इसी वादे के साथ जा रही हूँ कि अगली दफ़ा किसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि

भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव के चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल यही प्यार है, और इंतज़ार से शुरू होने वाला प्यार वाकई प्यार होता है। आप किसी के इंतज़ार में हैं, कुछ घड़ियां आप गिन रहे हैं कि किसी से मिलना है, इतनी शिद्दत से मिलना है। सिर्फ प्रेम संबंधों से ही हटके भी अगर बात करें तो दुनिया में भी आप प्रैक्टिकल लाइफ भी जब कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, उस समय भी इंतज़ार के ना अपने मायने होते हैं, उसकी अपनी एक हैसियत होती है खुद की। हर इंतज़ार शुभ और लाभ और लाभ और हानि के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता, उसका संदर्भ भी अलग अलग होता है। तो इंतज़ार के अपने मायने, और इंतज़ार से शुरू होने वाली हर डील, हर मोहब्बत, हर प्रेम संबंध कामयाब होता है, क्योंकि उसमें सब्र की इंतहा आप जांच पाते हैं, अपनी भी और सामने वाले की भी। और यहाँ भी इंतहा हम जाँच पाते हैं किस शिद्दत के साथ आप हमारे हर प्रोग्राम, हर शो का इंतज़ार करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए इंतज़ार शब्द से आज शुरू करने का सोचा। जीरो और शो हो चुका है शुरू, दिन का पहला प्रोग्राम आज के दिन का, आज हो गई अब 25 मई 2026 की, इसका ये सबसे पहला शो है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर, आपकी जानी मानी फ्रीक्वेंसी, हिंदुस्तान की सबसे पहली एफएम फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा आकाशवाणी की ऐप पर भी हम अवेलेबल हैं, जिसे हम न्यूज़ ऑन एयर कहते हैं। अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो अग्रिम स्वागत, क्योंकि आप जल्द ही जुड़ जाएंगे। भाई ये महफिल ही हम इस तरह की कोशिश करते हैं कि बस ये महफिल आपको बांध के रखें, आपके अपनेपन का ख्याल हमारे साथ जुड़ा रहे, आपके अपनेपन की सादगी, अपनेपन की जो कहना चाहिए जुम्बिश है, वो हमारे साथ जुड़ी रहे हमेशा, और साथ साथ चलते रहें घड़ी की इन सुइयों की तरह, जैसे कि अब ये चल रही हैं 12:14 लगभग और कुछ सेकंड्स हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जीरो आर शो मेरे यानी रजत के साथ, आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इस प्रोग्राम में,
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी। तेरी बोली
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से ही किसी बीमार इससे पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों

और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दीपांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 2:11 और नया सफर एक बार फिर से शुरू। आज के दिन का ये तीसरा प्रोग्राम और आप जुड़े हैं मेरे यानी रजत के साथ इन फ्रीक्वेंसीज पर जो बताया मैंने, और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। करना बस ये है, आपने अगर इसे डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर में और वहाँ खोज कीजिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 नहीं, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। यहाँ से आपको मिलेगा हमारा पता जो आपको ले जाएगा देश और दुनिया के हर हिस्से से, हर कोने से जुड़ने के लिए एक सुलभ और सुगम मार्ग पर। वैसे आप दिल्ली और एनसीआर में हमें फ्रीक्वेंसी से सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दूर हैं या बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आपको इस ऐप के ज़रिए हम से मुलाकात करनी होगी, और कर ही दीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का स्नेह, आप सभी के प्यार को सलाम, और इस खूबसूरत बेला को भी सलाम जो हमसे कहती है कि भाई खूबसूरत गानों का जो दौर है, जो हर दौर के हम सफ़र गाने रहे हैं, अब उन्हें प्ले करने का फिर से वक्त आ गया है। तो आपके साथ जुड़ चुके हैं हम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भुलाएं ना बने, ऐसे प्रोग्राम जो हर दौर में, हर समय में, हर समय अंतराल में हमारे साथ रहे, जिंदा हैं, आज भी गुनगुनाए जाते हैं। कोशिश करेंगे ऐसे गानों को चुन चुन कर पहुँचाया जाए आप तक, आपके रेडियो सेट्स तक, आपके मोबाइल फोन्स तक, जहाँ से भी, जिस तरह से भी, जिस जरिए से भी आप हमसे जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत भुलाएं ना बने कार्यक्रम में। मैं हूँ रजत, आप सभी का बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा अभिनंदन करते हुए।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जाए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनें। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के

भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को ये संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है? बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे

0: उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से भी दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सारेगामा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुबह के 4:12 और तेजी से हम बढ़ रहे हैं सुप्रभात की ओर, एक अच्छे दिन की ओर, एक शुभ दिन की ओर और एक सफल दिन की कामना हेतु एक और नए उजाले की ओर। कुछ ही देर में या यूं कहें कि कुछ मिनटों बाद सूरज की पहली किरण जब धरती पर आएगी अपना सलाम लेकर, अपना नमस्कार लेकर, तब हम कामना कर रहे होंगे कि हम सभी के लिए, पूरे विश्व, पूरे देश और समाज के लिए आने वाली यह सुबह और इसके बाद आने वाले दिन, दोपहर, सब शुभ हों, मंगलमय हों। इसी शुभकामना के साथ करते हैं सारेगामा की शुरुआत मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरा

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया

0: अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
1: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।